अथरबनू आनाउ खदाई अलो पाया नील बसर ले कपड़े पैरे तुरक पठानी अमल किया चारे वे सचिया।

दुख रोग संताप पुत्र सुनिए सच्ची वाणी, संत साजन पे सर से पूरे गुरु ते जान। सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रहया पर पूरे

संगत वेच वरतान दिया के बख्शो जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जप आप जी करो।

रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभौ प्रकाश अमितोज कह जाय।

गुर सिख मीत चल हो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली, रहाओ हर के संत, सुनो जन पाई, गुर सेवे हो बेग बेगाली। सत गुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जानो हो आज के कली।

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती समर कै।

कोए न कोहो आ न कोहोए जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात जैना देना करके कीती रात खसम सारे ते कम जात नानक नावे बायसनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदे मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग बडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सहे मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवेह उदम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बहिता कोय न किसकी तरया सिर से रिजक सवाहे ठाकुर कहे मन पौ करया उड़े उड़या वैसे कौनसा तिस पाछे बचरे शरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया सवन दान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सवन दान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं सब त्यावहीं तुझ जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जीहां का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना।

तूं पार ब्रह्मे अंत में अंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुझ जी, जन नानक तिन कुरबाना, हरते आवहे हरते आवहे तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैना हर ते आया जी, तेना टूटी जमकी फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बयंते बयंता, तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तब तापहि जपहि वयंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खटकर्म करंता, से भगत फले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडे अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरत जी, तू आपे करहे सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी, तुदे आपे सिरे सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करते

सिखियो बारे सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता शुक्ल मिलिछ करो रण गाता जे हस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुए ताही सौ काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा।

दारिद्र्य दुष्ट दुख तेरह, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, अब हाथ दे ले हो

सरठोर्म हो सहई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे तबते को आंख तर नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरा अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभय बहु वेद कहे हम एक ना जान्यो।

दोहरा सगल द्वार गौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार।

0: यस गोविंदास्तुहा राम करी महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सिति मन वजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगाबो हरी केरा मान जिनी मसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजी शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम है आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मने वस्या जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एहे वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कलो जित कर तारिया पंच दो तुद बस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तें सुख होआ तित घर अन्न हद बाजी आनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदामणि ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸੇ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਤਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਰਹੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਾਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਬੇਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਬੇਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰ ਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ

जननानक संगत साधहर मिलहो हम साध जना पगराली। हर हर जपन जप लो चलो जानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मिलहो हम साध जना पग रली। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: महाराज जी की उस्तत कर रहे ने, क्योंकि जिन्हां ने गुरु दे दीदार किते आ, जिहड़ा गुरु महाराज नूं समझदा ओ ते उस्तत करेगा ही करेगा, वो तो वारे वारे जाएगा गुरु साहब जी तो। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। वो तो कहेगा मैं भागा वाला जो ऐसे गुरु महाराज के चरणी लगा हुआ। वो तो गुरु उस्तत विच जुड़ेगा ते गुरु गुरु ही हर वेले जपेगा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जांकी कोई न मिटे। वो तो गुरु गुरु जपदा जिन्हों समझ आ गई, जिन्हें प्रतख गुरु का दीदार किया भावना दे नाल, जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, जिन्हें देख लिया दीदार किते। हुण उत्थे जिहड़े कवि ने, कवि जिहड़ी आ गुरु साहब जी दे प्रथाए, कहिंदे कविता दे विच गुरु साहब जी का जस गाउंदे हन।
1: ओतका होत आनंदपुर सुंदर, सुन सुन संगत आवे।
0: गुरु महाराज दी, गुरु खालसे दी यही ते उस्तत वडियाई है कि जो मर्जी हो जाए रहना चढ़दी कलां दे विच ही है, जो मर्जी हो जाए रहना सदा खेड़े ही है, मुरझाउणा नहीं, सानू सदा आनंद विच रखण लई महाराज ने यह अमृत बाणी दिती है कि तुसी सदा आनंद विच रहना है, विगास विच। उन्हां दी बाणी पढ़ो सुनो जिहड़े सदा विगास विच रहिंदे हन, नानक भगतां सदा विगास। विगास हुंदा जी पूरन खिड़ाओ, पूरा खिड़ जाना, जिहड़ा पूरा खिड़ गया वह दोबारा मुरझाउंदा नहीं है, जिन्ने मर्जी दुख सुख।

गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी, तिन लहणा थाप जोत जग तारी, लहणा पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास।

परमानंद गुरमुख कहियं, पर तख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनं। सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारन तरणं। जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपै,

तन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतित जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछ जाकी शरणं सत गुर गुर।

तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रह।

देव सैस मुख फनिंद जियो जरम करम माछ कछ हो बुरा जमुना कै कूल खेल खिलियो जिन गिंद जियो नाम सार ये तार।

हमारी गणतना गणिया काई अपना बिरद पसान हाथ दे रखे कर अपने सदा सदा रंग मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

अपने पक्षों के मुझे को सुनाया बड़ा होने कर का समर्थक चुनाया अगे कनिकट बचे बिल कर समझाया था न हो पाया।